तौर पर याद दिलाने वाली दस्तावेजी फिल्म अफिदाई फिल्म थी, यानी एक फिदाई की फिल्म में ये दिखाया गया था। फलस्तीनी सिनेमा पनाह गुजीन कैंपों की तंग गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी मेलों तक पहुंच गया है। एलिया सुलेमान, हानी अबू असद और एन मेरी जाकर जैसे नामों ने इस कहानी को केन से लेकर ऑस्कर की नामजदगियों तक पहुंचाया है। ख़ास तौर पर उमर और 200 मीटर जैसी फिल्मों ने पर्दा सीमी पर यह दिखाया कि किस तरह मकबूजा इलाकों में खड़ी की गई दीवारें ना सिर्फ शहरों को बल्कि इंसानों की रूहों को भी तकसीम करती हैं। ताहम आज बसरी याददाश्त की यह जंग एक नई बुलंदी पर पहुंच चुकी है। साल 2025 के ऑस्कर अवार्ड्स में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिलिस्तीन और नॉर्वे की मुश्तरका प्रोडक्शन नो अदर लैंड, यानी कोई दूसरी सरजमीन नहीं, ने मगरबी किनारे के इलाके मिसाफिर यात्रा में होने वाली तबाही और मजाहिमत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ देखने का एक जरिया नहीं है, बल्कि नाइंसाफी के खिलाफ उभरने वाली एक आलमी चीख है। इस चीख को सबसे मजबूत सहारा तुर्की और टीआरटी की तरफ से मिला। टीआरटी की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म फलस्तीन 36 ने जहां इस कब्जे की तारीखी गहराई को दस्तावेजी शक्ल दी, वहीं टीआरटी वर्ल्ड की तैयार करदा हॉली रिडेम्पशन यानी मुकद्दस मुहिम ने इंतहा पसंद आबादकारों के तशद्दुद को दुनिया के सामने लाते हुए एक मजबूत बसरी गवाही की शक्ल इख्तियार कर ली। गजा के जज्बाए मजाहिमत को बयान करने वाली फिल्म जैतून के दरख्त के नीचे यानी अंडर द ऑलिव ट्री मिट्टी से जुड़े रहने की एक सिनेमाटिक याददाश्त बन गई। बाज़ औक़ात एक फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि तारीख में एक बच्चे की आखिरी सांस को दर्ज किया जा सके। गजा में एक गाड़ी के अंदर अपने खानदान के साथ मशहूर हो जाने वाली नन ही हिंद रजब की कहानी अब महज एक खबर नहीं है। वो कहानी इंसानियत के मुश्तरका ज़मीर पर नक्श हो जाने वाला एक ऐसा मंजर बन चुकी है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। डैरिन जे सैलम ने फिल्म फरहा के जरिए नकबा वो अलमिया जब फलस्तीनों को उनके घरों से निकाला गया वो आज अम्माद बरनात की दस्तावेजी फिल्म फाइव ब्रोकन कैमराज में नज़र आने वाली हकीकत के साथ जुड़ जाता है। एक कैमरा टूटता है तो उसकी जगह नया कैमरा आ जाता है। डिजिटल एल्गोरिथम चाहे आज फलस्तीन की आवाज़ को दबाने की जितनी भी कोशिश कर ले, बसरी याददाश्त दराड़ों से छनती हुई रोशनी की तरह दुनिया तक पहुँचने का कोई ना कोई रास्ता हमेशा ढूंढ लेती है। फलस्तीनी सिनेमा हमें यह सिखाता है कि एक कौम बाज़ औक़ात अपना घर खो देती है, अपनी गलियां खो देती है, यहां तक कि अपने शहर भी खो सकती है, लेकिन जब तक तस्वीर और मनाजर बाकी हैं याददाश्त जिंदा रहती है। और जब तक एक डायरेक्टर ख्वाब देख रहा है, एक अदाकार याददाश्त को हकीकत का रूप दे रहा है और एक कैमरा अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, फलस्तीन की ये कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी भी हमेशा जिंदा रहेगी। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।